0: अगर 250 साल तक यहां रह जाने की वजह थी एक पौधा दे केम हियर फॉर द ओपियम पॉपी विच प्रोड्यूसेस द मोस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड हेरोइन। दुनिया में ये ओपियम सबसे ज्यादा उगता था दो जगहों में, अफगानिस्तान और गोल्डन ट्रायंगल। अंग्रेजों ने इन जगहों पर कब्जा करके इस ओपियम ट्रेड का 95% कंट्रोल कर लिया। इन 1947 व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया दे आल्सो लेफ्ट बिहाइंड द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द वर्ल्ड। और तब यह कारोबार दो हिस्सों में बट गया, अफगान ट्रेडिंग कंपनी और गोल्डन ट्रेडिंग कंपनी। तब शुरू हुए ये ओपियम वॉर्स और तब पैदा हुए ये विलन्स।
1: जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1। ऑन द फर्स्ट डे गॉड क्रिएटेड लाइट।